0: ठीक है, इसको अपना लगा देते हैं।
1: तुम
0: अंदर गए? सही नहीं गए, आप ऑफिस में बोल रहे।
1: 747, can you review your traffic?
0: 47, can you please have the RP on 940?
1: That's right.